मस्त मजे में जीना रे, अरे जीवन इसका नाम है प्यारे, अरे जीवन इसका नाम है प्यारे, तुझे है आगे चलना रे, जीवन इसका नाम है प्यारे, तुझे है आगे चलना रे।

नाम है प्यारे, तुझे है आगे चलना रे, जीवन इसका नाम है प्यारे, तुझे है आगे चलना रे।

कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

की विधा है ना वो किस विधा वो शब्द मैं इस्तेमाल करूं ऐसी चुनौती प्रतिभा आपको देती है।

में सिर्फ आंसू है, उनमें सिर्फ दर्द की रंज की बातें हैं और फरियादें हैं। मेरा अब कोई नहीं, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं। डूब गया है दिल गम के अंधेरे में, मेरी सारी दुनिया है दर्द के घेरे में, मेरे सारे

पूज्य श्री कुंदन शिमा साहब के चरणों में हम सभी की विराजमान स्नेही संत वृंद, विदुषी महासती वृंद, एक छोटा सा यदि जो बहने इधर बैठी हुई हैं, जो भाई लोग इधर बैठे हुए हैं, रोज की जगह छोड़ करके वो एक जिम्मेदारी लेते होंगे कि प्रवचन होते ही अपने चेयर वहां से हटा लेंगे तो रोज की जगह पर तुम इधर आ सकते हो यदि आता हो तो, है ना? क्योंकि आपको तो स्क्रीन पर मैं दिख रहा हूं लेकिन मेरी नजर के सामने तुम नहीं है तो मुझे थोड़ा गर्दन इधर उधर करनी पड़ रही है, है ना? तो जो जो भी जिनको भी अच्छा लगता हो या थोड़ी देर के लिए नीचे बैठने की तैयारी हो तो भी आ सकते हैं, है ना? केवल उनके लिए कह रहा हूँ जो आ सकते हैं, मैं व्यवस्था में नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो फिर जैसा है वैसा अपन बात कर लेते हैं, जैसे वैसे रह जाइए और जो आगे आ सकते हैं जब तक प्रवचन चलता है तब तक वो नीचे बैठने के लिए आगे भी आ सकते हैं। अब वो उसका कारण है ना, वैलेंटाइन ने उनको यहाँ बैठने की मना करी हुई, वैलेंटाइन ने उनको इधर बैठने की मना करी हुई है ना, बंधा हुआ नहीं है ना, बिखरा हुआ है। तो बिखरे हुए को समेटना और निखारना एक अच्छा काम होता है। मैं एक छोटी सी बात से मेरी बात शुरू कर रहा हूं। मैंने कल एक बात कही थी हमसे कि वस्तु से राग द्वेष करते हैं, समय से राग द्वेष करते हैं, परिस्थिति से राग द्वेष करते हैं, उस समय कर्मों का बंध होता है। और जिस समय किसी व्यक्ति से, किसी जीव से, किसी सजीव से राग द्वेष करते हैं, राग करेंगे तो दोस्ती का संबंध बनेगा, और द्वेष करोगे तो दुश्मनी का संबंध बनेगा। बिल्कुल शांति से सुनना ना, पर्यूषण परम विषय वापस आएगा ही। वो कर्मबंध की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागरूपों में मोहनीय कर्म की, कितनी? 70 कोड़ा कोड़ी सागरूपों में। और वो 70 कोड़ाकुड़ी सागरपम की स्थिति कोई व्यक्ति तीर्थंकर के मार्ग पर आ जाए आलोचना और प्रतिक्रमण कर ले तो एक दिन में, एक पल में, एक घंटे में समाप्त हो सकती है। लेकिन वैर का अनुबंध, जो द्वेष के कारण से बनता है, जो किसी का दोष ग्रहण करने से द्वेष होता है, द्वेष कब होता है? जब किसी का दोष यानी कमी ग्रहण करते हैं, उसमें वैर का अनुबंध होता है। और एक बार ये वैर का अनुबंध के साथ मृत्यु हो गई वैर के अनुबंध के साथ एक बार मृत्यु हो गई तो आखिरी जन्म तक वैरी तुम्हारे पास आना ही आना है, या वैरी के पास

0: चले जाने, ये रिश्ता खींचता है, दोनों ही रिश्ते खींचते हैं, दोस्ती का रिश्ता भी खींचता है और दुश्मनी का रिश्ता भी खींचता है, कर्म खींचता नहीं, कर्म केवल फल देता है। कर्म की ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रामेश्वर थोड़ा पुर सावधान से, कर्म की ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा आवश्यकता है कोई मेरा दुश्मन नहीं बने और मैं किसी का दुश्मन नहीं बने।
1: आवाज ऑन करो, तुम्हें आदू कर
0: गुरुदेव की कृपा बरसी और मैं आज की मेरी बात कर रहा हूं। किसी व्यक्ति के विषय में बावन 53 साल पहले मैंने उस व्यक्ति को देखा भी नहीं था, मिला भी नहीं था, लेकिन उसके विषय में मेरे पास जो मुझसे बहुत स्नेह करते थे उन्होंने उस व्यक्ति के विषय में मेरे दिमाग में निगेटिव इंफॉर्मेशन दे दी। मेरे दिमाग में उसकी निगेटिव इमेज बन गई। After some time, मुलाकात हुई और सामने वाले व्यक्ति ने, उसके पास मेरे विषय में कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन नहीं थी, वो ओपन माइंड था, वो खुले दिल से था, खुले मन से था, और उसने मुझे देख करके उसके पास केवल इतनी ही जानकारी कि मैं आया हूं, और उसने मुझे पूछा दोस्ती होगी क्या। और जो मेरे अंदर में निगेटिव इमेज थी वहां से जवाब आया नहीं होगी। आप कल्पना कर सकते हो वो पहला डायलॉग लाइफ लॉन्ग चलता रहा। बहुत प्रयास हुए लेकिन वो जो दोष को ग्रहण कर करके जो एक बार रिश्ता बन गया वो मूल से चेंज हो ही नहीं पाया। ये वैर के रिश्ते 99 लाख बोली 99,000 999 जन्म तक चलता है। 99 लाख 99,000 999 जन्म और वैरी और दोस्त को बुलाना नहीं पड़ता है, वैरी और दोस्तों को बुलाना नहीं पड़ता, वो बिन बुलाए आ ही जाता है, या हम उसके पास चले ही जाते हैं। कर्मों का अक्षय कर सकते हो, कर्मों का अक्षय कर सकते हो, घाती कर्म का अक्षय आराम से कर सकते हो, मोहनीय का अक्षय आराम से कर सकते हो, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतरे का अक्षय आराम से कर सकते हो, लेकिन वैर का अनुबंध का क्षय करना अकेले के हाथ में नहीं है। रिश्ता ये टू वे होता है और वस्तु के साथ का जो संबंध है वो वन वे होता है। जैसे मैं पट्टे पर बैठा हूं, आप जमीन पर बैठे हैं, जमीन ने आपको नहीं पकड़ा है, आप जब चाहे तब उसको छोड़ सकते हो, लेकिन रिश्ता आप छोड़ना चाहो तो भी छूटने वाला नहीं है। लेट मी रिपीट, कर्मों को छोड़ना तुम्हारे और मेरे हाथ में है, क्यों? कर्म जड़ है। कितना ही पकड़ के रखा होगा, कितनी ही शराब की आदत होगी, कितनी ही गुटखे की आदत होगी, छोड़ सकते हो, कि गुटखे ने आपको नहीं पकड़ा है, शराब ने आपको नहीं पकड़ा है, उसको हम छोड़ सकते हो। लेकिन जब जीव के साथ ये वैर का या दोस्ती का रिश्ता बनता है, तुम तोड़ना चाहो तो भी तोड़ नहीं सकते हो, चाहे वैर का हो चाहे प्रेम का हो। सुमिल ब्राह्मण के साथ दस कुमार का 99,99,999 जन्म पहले का वैर का अनुबंध है। हर हर जन्म में मिलते रहे वो, हर जन्म में मिलते रहे। तीर्थंकर पार्श्व का और कमट का रिश्ता, पहले जन्म में भाई थे, फर्स्ट जन्म में भाई थे। पार्श्वनाथ का जीव छोटा भाई, कमट का जीव बड़ा भाई, और उसी जन्म में मृत्यु के समय में वैर का रिश्ता बन गया। उसके बाद पार्श्वनाथ तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया। तीर्थंकर के पुण्य के समान पुण्य किसी का नहीं है, लेकिन फिर भी गमट उनको परेशान करने के लिए आ ही गया। अरिष्ट नेमी और राजुल का रिश्ता प्रेम का रिश्ता है। मैं रिश्ते की बात कर रहा हूं। कर्म अकेले तोड़े जा सकते हैं, कर्मों को आप तोड़ सकते हो, रिश्ता आपके बल पर, क्योंकि दोनों तरफ से है ना, उसने भी पकड़ा है और आपने भी पकड़ा है। आप छोड़ दोगे लेकिन वो नहीं छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा तो तुम छूट नहीं सकते। डिवोर्स वन वे होगा कि टू वे होगा? टू वे। निमिनाथ ने तोरण द्वार पर जाकर के लौट आए, ठुकरा करके आए राजुल को, छोड़ करके आए राजुल को। राजुल छूट पाई, ठुकरा दिया था, लेकिन राजुल छूट नहीं पाई, राजुल निमिनाथ को छोड़ नहीं पाई। रथनेमी जिसको राजुल धिक्कारती है, तू मर जा, धीरे तो तेजो सकामे ज्योतम जीवे कारणा संयंते मरणम भवे, तेरी मृत्यु हो जाता अच्छा है। इसके बावजूद भी रथनेमी राजुल को छोड़ पाया। आज रिश्ते का त्योहार है, मैंने शुरुआत में कहा कि आज गुरुदेव की कृपा बरसी, और आज मैं चाहता हूं कि जो गुरुदेव की कृपा से मेरा मन बना वो तुम्हारा हो जाए। मैं किसी के विषय में किसी को कुछ भी निगेटिव इन्फॉर्मेशन दूंगा नहीं। बोलेंगे मेरे पीछे, किसी को भी किसी के विषय में निगेटिव इन्फॉर्मेशन दूंगा नहीं। हो सकता है कि मेरे लिए वो व्यक्ति बुरा होगा, लेकिन उसके लिए वो बुरा होगा इसकी गारंटी नहीं है। मैं उसके वैर के संबंध बनाने का निमित्त क्यों बनूं? जिस व्यक्ति का और मेरा कोई परिचय ही नहीं था, यदि मेरे पास बड़े प्रेम से बड़े स्नेह से लोगों ने जानकारी दी थी और वो निगेटिव जानकारी नहीं देते, तो क्या ये वैर का रिश्ता बनता है? कि मुझे इंफॉर्मेशन दी गई थी कि उसके साथ दोस्ती नहीं करनी और मैंने इसको फॉलो कर लिया, जो मैंने बोल दिया कि दोस्ती नहीं होगी। यदि वो मेरे पास नेगेटिव इंफॉर्मेशन नहीं होती तो संबंध दोस्ती के बनने के दुश्मनी के बनने ये अगला विषय था। फर्स्ट मेरा आज से मन हुआ है कि किसी के विषय में किसी को भी अपने अनुभव के आधार पर मैं निगेटिव इनपुट नहीं दूंगा। आज रक्षाबंधन है, भाई बहन का ये रिश्ता प्यार का रिश्ता है, लेकिन कहीं ना कहीं भाई को बहन के विषय में, बहन को भाई के विषय में इधर उधर से नेगेटिव इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती और भाई बहन के रिश्ते में प्रेम की गांठ बनने के बजाय दूसरी गांठ पड़ जाती। मैं चाहूंगा कि मैं आज जो बात कर रहा हूं, जो जो भी यहां पर आए हैं, आज राखी बांधते समय आपके त्योहार की, आपके रिश्ते की समंसरी कर लो। कि आज दिन तक मैंने मेरे भाई के विषय में, मैंने मेरी बहन के विषय में किसी से कोई निगेटिव बात सुनकर के कुछ धारणा बनाई होगी, तो आज राखी बांधने के पहले, राखी बंधवाने के पहले उससे फ्री हो जाना है। कभी आपके होम मिनिस्टर ने आपकी बहन के विषय में आपको कुछ कहा होगा? कभी मां ने आपके भाई के विषय में आपको कुछ बोला होगा? कि तने नहीं मालूम वो पहला जिसो नहीं रही हो, अभी जब से वो आई ना वो चेंज हो गई है। मुझे एक इंसिडेंस, एक केस छिंदवाड़ा की, उन्होंने कहा हुआ क्या तो बता रहा हूं आपको। मां अपने बहू के विषय में कुछ बोल रही थी अपने बेटी के पास, जो हुआ घटना बता रहा हूं मैं आपको। और बेटी के बहू के विषय में बोलते बोलते बेटी के विषय में बोल दिया, और वो सारी रिकॉर्डिंग हो गई, बेटी ने रिकॉर्डिंग कर ली। और एक्सीडेंटली वो रिकॉर्डिंग बेटे ने सुन ली, और उस दिन से बेटे का मां बाप के साथ का रिश्ता जो बिगड़ा है, मेरे समझाने के बावजूद भी नहीं सुधरा। तो मैंने मेरा भी एक्सपीरियंस आपको शेयर किया है, मैंने जो मेरे साथ केस हुई उसके भी कर रहा हूं। तो इसलिए आज रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर मेरे दिल की गहराई से तुमसे आग्रह कि कुछ भी सुना होगा अपने भाई के विषय में, कुछ भी सुना अपने बहन के विषय में, और जिसको ओशरामी ओशरामी ओशरामी, और मैं किसी के विषय में किसी को भी कोई निगेटिव इनपुट नहीं दूंगा। जितनी बहने बेटे हैं जरूर संकल्प लें, मैं मेरे भाभी के विषय में मेरे भाई के पास जो भी अच्छा बुरा उसने किया होगा कभी नहीं बोलूंगी। कि मुझे पता है जब भाई के विषय भाभी के विषय में तुम भाई को कुछ बताती हो तो बोल कुछ नहीं पाता है, लेकिन उनके दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं खटास आ ही जाती है। और क्या मिलेगा तुम्हें, भाई और भाभी के रिश्ते में खटास ला करके तुम्हें क्या मिलेगा? क्या उनके रिश्ते में खटास आने के बाद भाई सुख से रह पाएगा? तो तुम अपने भाई को सुखी करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो? रामेश्वर, आप अपने भाई को सुखी करना चाहते नहीं करना चाहते हो? हेलो, बोलिए ना। करना चाहते तो पहला भाभी के विषय में भाई को कोई भी निगेटिव इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। इतने यदि आज संकल्प तुमने कर लिया तो उनके रिश्तों में केसर घुल जाओगे, और उनके रिश्ते में केसर घुलेगी तो केसर का दूध तुमको भी पीने को मिलेगा। और जितनी माताएं यहां पर है जो सास भी बन चुकी है और जिनके बेटे ससुराल जा चुके हैं, उनसे एक छोटा सा आग्रह करना चाहता हूं। बेटे को जब भी कुछ देना हो वो बहू के हाथ से दिलाना। किसके हाथ से? बहू के हाथ से। यदि तुम बहू के हाथ से दिलाओगे तो भाभी ननंद का रिश्ता प्यार का होगा या नफरत का होगा? और तुमने बहुत से छिपा करके बेटे को कुल दिया है, आपको क्या लगता है बहू को पता नहीं चलेगा? और आपने दिया थोड़ा होगा, बहू को लगेगा छिपा करके दिया है, इसका मतलब ज्यादा ही दिया। यदि सास ने छोटा सा नियम लागू कर लिया कि बेटे को कुछ भी देना है तो बहू के हाथ से देना है, तो ननंद भाभी का रिश्ता प्यार का बनेगा नहीं बनेगा? कर सकते हो, ये रिश्ते की कहानी है। और रिश्ते का भी आश्रय होता है। क्या होता है? रिश्ते का भी आश्रय होता है, और रिश्ते का भी बंध पड़ता है, और रिश्ते का पड़ा हुआ बंध 99 लाख 1999 जन्म तक चलता है। आज रक्षाबंधन के इस पावन त्योहार के अवसर पर आप सभी से एक छोटा सा छोटी सी मनोहार है कि किसी के रिश्ते में खटास आ जाए, ऐसा तुम्हारी खटास होगी तुम्हारे पास रखो ना, तुम्हारा उससे नहीं पटता है तुम्हारे पास रखो ना, तुम्हारा जिसके साथ नहीं निपटता है उसका दूसरे के साथ नहीं निभेगा ऐसा कोई जरूरी है? तुम्हारी खटास वहां क्यों पहुंचाते हो? और अगला कदम जो मैंने तय किया आज मेरे लिए, गुरुदेव के चरणों में इतनी ही प्रार्थना करके आया हूं आज कि किसी ने भी किसी के विषय में कुछ भी निगेटिव कहा तो उसको वैसे के वैसे स्वीकार नहीं करूंगा। क्यों? बोलने वाला कोई तीर्थंकर नहीं है, बोलने वाला कोई साधु नहीं है, बोलने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि जिसको झूठ बोलने के बचकान है। यदि मंथरा की बात कई कई ने सोच करके स्वीकार करी होती तो आज कितनी ही बहनों का नाम कई कई होता। क्यों नहीं नाम रख रहे आज? किसने मंथन की बात बिना सोचे स्वीकार कर ली? मुझे कई कई नहीं बनना है, ये आज का मेरा डिसीजन है कि मुझे कई कई नहीं बनना है। आपका क्या निर्णय है? हेलो, आपको कई कई बनना है? नहीं ना, तो बोलो ना फिर, मुझे कई कई नहीं बनना है। किसी के विषय में क्योंकि बोलने वाले नहीं बोलेंगे ऐसा तो कह नहीं सकता मैं, बोलने वाला पक्का बोलेगा, पक्का बोलेगा, लेकिन मैं उसकी बात को दो कान के बीच में मेरा दिमाग है। क्या मस्त व्यवस्था है ना, अपने शरीर की रचना तो देखो, दो कान के बीच में दिमाग है, इसका मीनिंग क्या है? दोनों कानों से जो भी आएगा वो दिमाग से सोचना चाहिए। यदि सोच करके स्वीकार करोगे तो कभी कई कई नहीं बनोगे। ये आज के मेरे साधना के भूमिका पर से आए हुए दो संकल्प है, इसलिए मैं आज सारे इस माहौल के बीच में बात कर रहा हूं कि मैं आज उससे बहुत गुरुदेव के प्रति बहुत कृतज्ञ हो गया हूं। कृतज्ञ तो हुई लेकिन आज जो समझ दी गुरुदेव ने, और वो आपके साथ शेयर किया है। फिर एक बार प्रेम से सुन लेना कि रिश्तों का जब बंध पड़ता है, रिश्तों का जब बंध पड़ता है तो तुम्हारे तोड़ने से टूटता नहीं है। बस भगवान महावीर के जीवन का एक छोटा सा प्रसंग दे दूं आपको जिससे आपको ये बात पक्की दिमाग में बैठ जाए। तीर्थंकर महावीर विहार कर रहे थे, गंधर्व साथ में थे, सारे साधु साथ में थे, विहार चल रहा है। और विहार चलते चलते तीर्थंकर महावीर एक पेड़ के नीचे रुक गए, इंद्रपुत्र गौतम को पास में बुलाया, बोले देख वो सामने खेती है ना, उस खेती में किसान है, उस किसान को जाकर के धर्म का वरदान देकर राजा किसान को, किसान आया नहीं लेने के लिए, इंद्र भूत गौतम उसको जानते भी नहीं जन्म में। इंद्रभूति गौतम गए और इंद्रभूति गौतम को आता हुआ देखते हैं ऋषि, किसान बहुत खुश हो गया, कोई परिचय नहीं, कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं। तुम्हारे जिंदगी में भी ऐसा कभी हुआ होगा किसी व्यक्ति को देख करके मन बिना परिचय के भी खुश हो जाता है। इंद्रभूति गौतम गए, बात करी उससे और बात करी तो उसने स्वीकार कर ली, बड़ा अच्छा लगा उसको। बात अच्छी लगी कि आदमी अच्छा लगा? हाँ, क्या क्या अच्छा लगा? आदमी अच्छा लगा इसलिए बात अच्छी लगी। बात तो बाद में आई, पहले कौन आया? पहले आदमी, उनका आना उसको अच्छा लगा। आदमी अच्छा लगे ना तो आदमी की बात अच्छी लगती है, और आदमी खारा लगे ना तो आदमी की बात खारी लगती है। बात खारी नहीं होती, आदमी खारा होता है। और गौतम स्वामी का काम हो गया, उसके मन में देव गुरु धर्म के प्रति प्रेम जागृत हो गया, वो जाने लगे लौट करके। उसने हाथ पकड़ा, बोले कहाँ जा रहे? तुमसे अब मेरा प्यार हो गया, तुम नहीं जा सकते। बोले भैया मुझे मेरे भगवान ने, गुरु ने भेजा तेरे पास। अच्छा तुम नहीं आए, तुमको किसी ने भेजा है? बोले हाँ, मेरे भगवान की कृपा तेरे पर बरसी, उन्होंने कहा तेरे उसके पास जाने के लिए, उनकी कृपा से मैं आया हूं, मैं मेरे सोच से नहीं आया हूं, मेरा निर्णय नहीं तेरे पास आने का। अब जिस भगवान को देखा नहीं, उस भगवान की इस कृपा के प्रति उसके मन में और आओ भाव जन्मा कि कैसे वो भगवान होंगे कि जिन्होंने इतने अच्छे आदमी को मेरे पास भेजा। बोले फिर मुझे भगवान के पास ले चलो ना। बोले चल। अब वो चल रहा है, बड़े प्रेम से चल रहा है। चलते समय उसके मन में क्या आ रहा है? हेलो, बोलो तो सही, क्या आ रहा है? अनदेखे भगवान के लिए उसके मन में भक्ति जागृत हो रही है, अनदेखे भगवान के लिए। एक एक कदम पर उसके मन में अभो भाव जागृत हो रहा है कि मैं भगवान के पास जाऊंगा, उनके चरण पकड़ूंगा, उनको धन्यवाद दूंगा। और गए पास में, बहन जी उस मोबाइल की बैटरी चालू है आपकी। और जैसे ही पास में पहुंचे, थोड़ी दूर पर महावीर नजर आए, तो इंद्रभूति गौतम ने वैसे वंदना शुरू करी। ये आगम का विधान है कि श्रद्धे जहां से दिखे वहां से वंदना, पहले वंदन वहां से जहां से नजर आ जाए। चरण स्पर्श तो पास में जाकर के होता है, लेकिन पहला वंदन जहां से दिखे वहां से होता है। और इंद्रभूति गौतम ने उस किसान को कहा, वो देख मेरे प्रभु सामने। और देख, बोलते समय इंद्रभूति गौतम को तो जैसे लगा कि बहुत दिनों के बाद मिल रहे। उसकी खुशी देखी और भगवान के तरफ देखा, और भगवान के तरफ देखा और जैसे लाल कपड़े को देख करके बैल भड़कता, शायद आपके भी कई लाल कपड़े होंगे कि जिनको देख करके आपका दिमाग भटकता है। वो दिखियो कि माथो उठियो है कि कोई होशिला, पक्को होशिला। और उसने कहा कि ये है वो, तो तुम भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। वो भागा, ऐसा दौड़ा, ऐसा दौड़ा, ऐसा दौड़ा कि कई पीछे कुत्ता लगा उसके, ऐसा दौड़ा। अब इंद्रभूति गौतम और सारे लोग बिल्कुल सरप्राइज, तो बोले भक्ति में आया ना, प्रभु को देख करके भाग गया डर करके। अरे प्रभु को देख कर तो सबका डर भाग जाता है, और इसको डर क्यों लगा? इंद्रभूति गौतम अपने मन की बात कभी मन में नहीं रखते। हेलो, इंद्रभूति गौतम अपने मन की बात कभी मन में नहीं रखते वो सीधे कहां पहुंचाते, अपने गुरु के पास, अपने परमात्मा के पास। आपकी आदत क्या है? अपनी मन की बात मन में नहीं रखो थे, बिल्कुल नहीं रखो। ताकि घनी सुंदर आदत है, प्रवीण ऋषि विषय के मन में आयो ना तो प्रवीण ऋषि नहीं बोलो, बाकी दुनिया ने सगा ने बोलो, ये सर लो। हाँ थे मन में नहीं रखो, मन में रखो तो थको तो मैं आरती उतारू, थे मन में रखो को नहीं। इंद्रभूति गौतम मन में नहीं रखा और जाकर के महावीर को पूछा कि प्रभु ये क्या हो गया, प्यार में आया था नफरत में कैसे चला गया। और भगवान महावीर ने इंद्रभूति गौतम को कहा, इंद्रभूति तेरे साथ उसका पिछले जन्म का प्यार का रिश्ता है, तेरे साथ उसका पिछले जन्म का प्यार का रिश्ता है, मेरे साथ उसका पिछले जन्म का दुश्मनी का रिश्ता है। मैं दुश्मन नहीं हूं लेकिन उसका रिश्ता दुश्मनी का है। मेरी ओर से प्रेम है, मेरी ओर से दोस्ती है लेकिन उसकी ओर से दुश्मनी है। इंद्रभूति गौतम का आश्चर्य हुआ, आप ये कैसे हो सकता है। बोले एक काम हो गया मेरा, तो उसके पास जाकर आया, उसके मन में अनजाने में मेरे प्रति भक्ति का भाव जन्म चुका है लेकिन आपका उसकी दुश्मनी कैसे। और फिर महावीर ने कहा कि मैं त्रिपुष्ट वासुदेव था, तू मेरा सारथी था और ये किसान नरभक्षी शेर था, आदमखोर शेर था, तुंगगिरी के पहाड़ियों में था, इसकी व्यवस्था करने के लिए मेरी ड्यूटी लगी और तू मेरे साथ था। कहानी लंबी है, मैं छुट्टी कर रहा हूं। और ये जैसे मेरे पर जंप लगाई इसने, मैंने इसके जबड़े में दोनों हाथ डाल करके इसका जबड़ा चीर दिया था। ये तड़प रहा था, ये बिलख रहा था और उस समय तू इसके पास गया, तूने इसको सांत्वना दी, तूने इसको कहा कि तू भी केसरी सिंह है तो तुझे भी नर केसरी से ही मौत आई है, सांत्वना प्रेम दिया है। और उस समय तेरे साथ इसका प्रेम का रिश्ता बना, जो तेरी बात इसने बिना दिमाग चलाए स्वीकार कर ली। तीर्थंकर को भी यदि पिछले जन्म का वैर होगा तो तीर्थंकर को देख करके भी उस किसान को डर लगता है, ये रिश्ते की महिमा है। तो आज का त्यौहार रिश्तों का त्यौहार है, मेरी मंगल भावना है, विधि आगे शुरू होगी, ये रिश्ते का त्यौहार है और मैं चाहता हूं कि आपका ये रिश्ता, आपका ये रिश्ता ब्राह्मी सुंदरी और बाहुबली का रिश्ता हो जाए, ब्राह्मी सुंदरी और भरत का रिश्ता हो जाए। इस रिश्ते में ऐसी बल आ जाए, इतना पवित्रतम हो जाए कि जहां जिस अंधियारे में कोई काम ना आए वहां बहन भाई के लिए आए उजाला लेकर के, और भाई बहन के ढाल बन करके जाए। रिश्ते हमेशा टू वे होते, वन वे नहीं होते। 2 मिनट मोबाइल ले, 2 मिनट मोबाइल ले। मैं चाहता हूं आज, अभी चाहोगे? हेलो, मैं चाह रहा हूं, आपकी चाहना है क्या? आवाज नहीं आ रही, शायद आप नहीं चाहते। अरे इतने सज धज करके आए, इतने उल्लास से आए और आवाज इतनी सुस्त। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा भाई बहन का रिश्ता ऐसा हो जाए जैसा वनराज चावड़ा और श्रीदेवी का हुआ था। ये खून का रिश्ता नहीं है, ये दिल का रिश्ता है, ये भावना का रिश्ता है, ये डीएनए नहीं है, ये सोल का रिश्ता है, ये आत्मा का रिश्ता है, एक दूसरे को पावन बनाने का रिश्ता है, एक दूसरे को पवित्र बनाने का रिश्ता है और एक वचन देने का रिश्ता है कि तू चाहे जितने अहंकार के शिखर पर पहुंच जाए, मैं तुझे जमीन पर लेकर आऊंगी ही आऊंगी। तू चाहे जितना शोक में मग्न हो जाए, मैं तुझे बाहर निकालूंगी ही निकालूंगी। और मेरे पावन हाथों से आज तेरे भाल पर मैं जय तिलक करूंगी, मैं यश का तिलक करूंगी। तू सदा जयवंत रहेगा। ये बहन ने भावना बानी है और भाई ने एक ही भावना बानी है कि तारे सारे राहों के काटे मैं फूल बनाऊंगा। सिंपल प्रॉमिस। तू कभी स्वयं को अकेला महसूस मत कर जाएगी। बहन को केवल तुम्हारी ओर से इतना ही वचन चाहिए। रमेश्वर थोड़ा भेज देना, शार्प कम कर। बहन को तुम्हारी ओर से केवल एक ही वचन चाहिए, अपने आप को कभी अकेला मत समझना। आइए इन्हीं भावनाओं के साथ अगली तैयारी में लगते हैं। 10 मिनट आपको पूरा उल्लास करने के लिए देता हूं। तीर्थेश्वर जी खुशी के गीत गाएंगे, आप उसमें झूमते झूमते क्या करें, बहन के पास भाई को बुलाएं या भाई बहन के पास जाएंगे, क्या करना है? एक कोई पॉलिसी तय करनी पड़ेगी। बहन के पास भाई, ओके। तो देखता हूं तुम्हारे प्यारे में कितना बल है और भाई तुम्हारे पास कितना दौड़ा दौड़ा आता है। आज के पचकान कराता हूं, तब तक आप लोग अपने अपने भाई बहन के पास, अपने अपने बहन के पास, अपने अपने भाई के पास। हाँ चलिए, आपको जितना आवाज करना करिए, और मैं आवाज की बाबंदी नहीं लगा रहा हूं, मस्ती से है ना। भाई बहन मिले और चुपचाप रह जाए तो भाई बहन ही नहीं होते हैं।

0: ने आज दिन तक अनादि काल के संसार में मोहवश वेद उदय के कारण से जो भी अब्रह्म का सेवन हुआ है, वो तीर्थंकर परमात्मा, वो आराध्य गुरुदेव, आपके चरणों में प्रणाम करते हुए आतीत के सारे अब्रह्म सेवन का आलोचन करते हैं, निंदा करते हैं, ग्रहण करते हैं। भविष्य के लिए हम दोनों एक नए रिश्ते में बनने जा रहे हैं। हमारा रिश्ता साधक और साधिका का होगा। हम एक दूसरे के ब्रह्मचर्य का पोषण करेंगे। आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहे। प्रवक्तक से जी पचकान फरमा रहे हैं।
1: एक करण एक योग से करू नहीं कैसा तस वंते बड़ी कमामी निंदामी गरियामी ओस्त्रे ओस्त्रे।

0: किस गुणों की उसने बुनाई हो, ऐसे ज्ञान दर्शन चारित्र का सा क्या हो। हाँ ज्ञान
1: सभी सृष्टि आ गया है, सभी सृष्टि आ गया है।

0: कान लेने वालों को।
1: और आइए और एक पचकान है, ये मेरे पास एक नन्ना सा बच्चा खड़ा है
0: रुद्र मंगदिया,
1: जिसकी माँ ने पिछले साल मांसखमन किया था, वो भी वो जिंदगी में पहली बार मांसखमन किया था, जिंदगी में तपस्या ही पहली बार करी थी, ब्यास नबी ने किया था, और ये उसका बेटा मेरे साथ खड़ा है, इसको भी आज इसका बर्थडे है, और जन्मदिन पर गुरु के चरणों में ब्यास ने की मांसखमन की भेंट चढ़ाने के लिए बंबई से आया है। रुद्र मुगदिया इसका नाम है। इसको मैंने कल पूछा, ये जवाब देगा आपको, स्कूल में जाना, बंबई के स्कूल में जाना, बच्चे सारे अपना अपना टिफिन खा रहे हैं, एक मीटर बबल सेट एक मीटर, बच्चे अपना अपना टिफिन खा रहे हैं, बच्चे इसको चिढ़ा रहे हैं, तू भी खा ले, तेरा फेवरेट आइटम है, इसने क्या जवाब दिया इसके मुंह से सुनो।
2: मैंने बोला कि मैं मेरा होमवर्क कंप्लीट कर रहा हूँ, मेरा व्रत है, तो तुम लोग प्लीज साइड हो जाओ, मेरे को मेरे रास्ते से नहीं हटना है।
1: आगे क्या बोला, हमारा जैन धर्म कैसा है, जैन धर्म की तपस्या कैसी है?
2: जैन धर्म में ऐसा सिखाते हैं कि कोई भी चीज का अपमान नहीं करना चाहिए, हमारे सारे चीजों को साथ में लेकर चलना चाहिए।
0: हर्ष हर्ष,
1: आज इसका ब्यासनी का मांस खमन है, आज इसके ब्यासनी के पचकान मांस खमन के जहाँ जोड़, छोटी सी उम्र में ब्यासनी का बंबई में रहते हुए मांस खमन करने वाले रुद्र को
0: धन्यवाद,
1: और रुद्र का सत्कार समर्पण चतुर्मास समिति कर रही है। इसके लिए आपके सामने रखा है कि आपके बच्चों को आपने 8 दिन ब्यासना कराना है, और आपने भी 7 दिन ब्यासना और संवत्सरी के दिन उपवास।